कबीर मोहे मरने का चाव है, मरूं ता हर के द्वार, मात हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। पहला मरण कबूल, जीवन की छाड़ आस, हो सबना की ऋण का, तो आओ हमारे पास। सो को टल गुर से अनस सहज सुभाय, दर्शन पर से गुरु जन्म मरण दुख जाय। सिफत खसामति नूर यार सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सचे पात सा, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पात साहो सिर सादा साहो, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दाव साहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, तना श्री

प्राकृतिक रूप देख जीण वाला। कोई रिजक दी चिंता नहीं सी, इतनी वनस्पति, इतना कंद मूल, इतने फल फुल स्वभाविक उपलब्ध सन। ये जी रहा सी इस तरह जैसे गर्भकाल दा बच्चा जी रहा, निश्चिंत सी, बेफिक्र सी और मन विच संतोख सी, संतुष्टि सी। यही कारण है कि सतयुग दे कोई परबल अवतारी पुरुष नहीं आया। गर्भकाल दे बच्चे नो आखिर समझाण वास्ते, सिखाण वास्ते किस दी लोड़ है? भाव किसी दी भी लोड़ नहीं है। ओते उस अवस्था दे जी रहे है जिस अवस्था बारे सारी सिखलाई दिती जाती है, उते स्वभाविक है उसके कोल। मन उसका टिके होया है, आनंदमयी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक पहले पहरे रहन के वन जारिया मित्रा हुकम पाया गरबास उर्द तप अंतर करे वन जारिया मित्रा खसम सेती अरदास। भावे उल्टा है गर्व देच पर अरदास देच है, प्रार्थना देच है और नाम अभ्यास देच है। भाव नाम अभ्यास नाल जो अवस्था बन दिए, प्रार्थना जो आनंद बनता है वो उसके कोल है। बच्चा उसे आनंद जी रहे है, उसे ही रस दे जो है जी रहे है। इस वास्ते कहिंदे ने सतयुग देच अवतार आया पर बोना, सतयुग तय माण्यो छल्यो बल बावन भायो, बावन अवतार बोना अवतार। हां कोई दाई, कोई डॉक्टर माड़ा मोटा देख के कुछ औषधि कुछ दवाई दे सकता है, लेकिन वास्तविक इस बच्चे नु कुछ भी लोड़ नहीं, किसी चीज की भी लोड़ नहीं। मनुख जी रहा सी प्रकृति दे प्राकृतिक ढंग नाल, खुला घूम रहा सी। कोई देश नहीं सी, कोई जात पात नहीं सी, कोई कबीला नहीं सी, कोई परिवार नहीं सी। आखिर ब्रह्म ज्ञान की अवस्था विच भी कोई देश नहीं रह जाता, कोई परिवार नहीं रह जाता, कोई जात पात नहीं रह जाती। आखिर ब्रह्म ज्ञानी भी ते उस तरह ही विशालता दे स्वतंत्र होके जो है जीवदा है। ये जीवना स्वभाविक उस मनुख कोल सी जिसनु असी सतयुग कहिंदे आ ते सतयुगी जीव कहिंदे आ। जैसे बुढ़ा भी बचपन नु याद करता है, किसी हद तक गर्भकाल की अवस्था नु याद करता है, हो बहो सतयुग मनुख नु बार बार याद आता है। चाहे बाजार विच बैठा है, परिवार विच बैठा है, सत्संग विच बैठा है, महिमा सतयुग दी। क्यों? सतयुग दे जो स्वभाविक अवस्था सी एक ब्रह्म ज्ञानी दी, स्वभाविक प्राकृतिक रूप दे, उसनु हम ये प्राप्त करना चाहता है। इस वास्ते सतयुग दी याग है। दरअसल सतयुग दे अगर सतवादी सी, संतुष्ट सी, ये कोई इसकी अपनी उपलब्धि नहीं सी, अपनी मेहनत नहीं सी, प्राकृतिक सी। अगर बच्चे नु खुराक मिल रही है, पानी मिल रहा है, श्वास मिल रहे ने, गर्भकाल दे बच्चे दी इस विच कोई अपनी उपलब्धि नहीं, अपनी कोई मेहनत नहीं है, ये तो स्वाभाविक हो रहा है, ये तो प्राकृतिक हो रहा है। अगर उस वक्त दा मनुख धार्मिक सी तो प्राकृतिक सी। प्रकृति ने ही उसनु जो जीवन दिता वास्तविक वो धार्मिक सी और उस दिच मनुख जी रहा सी सत दिच संतोख दिच। सतयुग रथ संतोख का धर्म गे रखवा, मर्यादा दिच जी रहा सी। भुख लगी है ताई खांदा सी, उंज नहीं।

0: प्यास लगी है ताई पींदा सी उंज नहीं, नींद आई है ताई सौंदा सी उंज नहीं। बिल्कुल धार्मिक ढंग नाल जी रहा सी, भुख नहीं है तो नहीं खांदा सी, और जब खांदा भी सी तो घट खांदा सी। फल तोड़न वास्ते जगह जगह फल लभण वास्ते इनू परिश्रम भी जे थोड़ा बहुत करना पैंदा सी, उहदे नाल इसकी एक तरीके दे नाल वर्जिश हो जांदी सी, और इतना शरीर नू चाहिदा भी सी तो स्वस्थ सी, मन करके तन करके सुखी सी। सतयुग दी बस यही रूप रेखा है, पर इस अवस्था ते कोई माण नहीं कीता जा सकता। गर्भकाल दा बच्चा की माण करिए उसते, उस जिंदगी ते कोई माण कीता जा सकता है? हाँ, मानसिक अवस्था ते भी माण नहीं कीता जा सकता। आनंद कोल है, रस कोल है, पर अचेत है, बिल्कुल अचेत है। आनंद दी समझ कोई नहीं, उस रस दी भी समझ कोई नहीं, और जिस दिन समझ आएगी, बोध आएगा, उस दिन आनंद नहीं होगा। आखिर गर्भकाल चो मनुख आया, कबीले बने, कुटुंब बने, जात पात बनिया, इलाकियां दियां वंडियां हुईयां, छोटे छोटे रजवाड़े बने। ये त्रेता युग से जब छोटे छोटे रजवाड़े बने, कबीले बने, परिवार बने, जात पात बनिया, जिम्मेवारियां वधिया, उन्हां दी पूर्ति दे लई शक्ति चाहिदी सी, ताकत चाहिदी सी। तो त्रेते रथ जते का जोर अगेर दबाओ, हर परिवार जोरावर होना चाहता सी, हर कबीला शक्तिशाली होना चाहता सी, हर राजा महाराजा अपना राज विस्तार चाहता सी। ए मनुखी दौर दा ओ बचपना सी, जो मां दी कुख तो बाहर आके बच्चा धरती दी गोद दे चाहुंदा है, घुटणिया दे बाहर चलदा है, खिडौणिया नाल खेडदा है, और उन्हों ताकत चाहिए, उन्हों शक्ति चाहिए। एक बच्चा जोरावर होना चाहता है, तो यह बचपन का दौर सी, तो यह बच्चा मर्यादा दिच रवे, मर्यादा च बोले, मर्यादा दिच उठे, मर्यादा दिच खावे पीवे, तो त्रेते युग दिच अवतारी पुरुष आए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उस अवतार नो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या गया तो ठीक है, जीवन मर्यादा दिच नहीं सी, राजे दी की मर्यादा, प्रजा दी की मर्यादा, गुरु दी की मर्यादा, शिष्य दी की मर्यादा, मां बाप दी की मर्यादा, और औलाद दी की मर्यादा, ये सारी तरतीब जिसने दिती, ये देश उसनों जानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, त्रेते युग दे अवतारी पुरुष, मर्यादा दी खातर मर मिटना है, जीवन भी चला जाए लेकिन मर्यादा नहीं जानी चाहिए, मर्यादा कायम रहनी चाहिए। अपने प्राणा नू दे के भी मर्यादा नू बचाया जाए, संजोया जाए, तो ये एक युग से जिस विच मर्यादा दी परंपरा चारों पासे चली, पर ये बचपना से, बचपन दा दौर से, मनुखता दा बचपना से, ताकत चाहिदी से, जोर चाहिदा से, इस वास्ते जोर सीना झपटियां आम सन, तो मर्यादा देनी पई। जैसे अक्सर बच्चे खोआ खाई विच रहिंदे ने, और बच्चा देना नहीं जानदा, लेना जानदा। एक बच्चे कोल पंज खिडौने होवन, दूसरे कोल एक होवे, तो उसनों इतना कह दिए तू इन्हां पंजां दे चों एक दे दे, ताकि उस कोल दो हो जाणगे, तेरे कोल चार हो जाणगे, वो पंजां दे चों अपना एक नहीं देगा, बल्कि दूसरे का एक भी खोण की कोशिश करेगा। ये बच्चे का सुभा, इतरे ते युग दा सुभाष ही खोया खाई, ते खोया खाई दे सफलता मिल सके जोर ते चाहिदा सी, ताकत ते चाहिदी सी। जिंदगी दा लक्ष्य जद जोर हो जाए, ताकत हो जाए, ते प्राप्ति दा साधन जद जत हो जाए, तो ओ त्रेता युग बचपन दा दौर आए उस विच श्री राम प्राइमरी स्कूल दे उस्ताद कहे जा सकते ने, और प्राइमरी स्कूल दे बच्चियां नो पढ़ाण दा ढंग, खास करके नर्सरी दे बच्चियां नो पढ़ाण दा एक ढंग, समझाण दा एक ढंग श्री राम ने आरंभ कीता। द्वापर जवान हो गया मनुख, हुण इस नू उठण बैठना सिखाण दी लोड़ नहीं है, हुण इस नू बोलण दी तमीज सिखाण दी लोड़ नहीं है, जवान हो गए। अगर जवान बच्चे नू भी कहना पे तो इंज बैठ, इंज चल, इंज बोल, तो शायद अजे वो जवान नहीं होया। जवान इन्हां जिम्मेवारियां नू समझदा है, बालग हो गया है। बालग होया है उस जमाने आए श्री कृष्ण, और कृष्ण जी नू कहंदन लीला परशोत्तम श्री कृष्ण। जवान उम्र वाकई एक लीला है, एक लीला है, एक रास लीला है। जीवन दिच शक्ति बड़ी है, ताकत बड़ी है, उछाल बड़ा है, होम दिच उबाल बड़ा है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रथवा, ये उछलिया होया होम, ये उछली हुई शक्ति अनर्थ नु जन्म ना देवे। तो हुण कुदरती गल्ले उच्चा आचरण सिखाना ही सी। सत अगेर अथवा जब जीवन दा लक्ष्य होवे उच्चा इखलाक, ते प्राप्ति दा साधन बन जाए तप द्वापर। ए विचारधारा देण आए श्री कृष्ण। मर्यादा जबरन थोपे नहीं जा सकती। कृष्ण दा संदेश मनुख जी सके ढंग नाल, मर्यादा सहायक होवे, मर्यादा मारू ना होवे। जिथे जिथे मर्यादा करके मनुखता मरे, मनुख मरे, उथे उथे मर्यादा नु एक पासे कर दिता जाए, मनुख नु मारन दी लोड़ नहीं। जैसे देखदे हां मर्यादा की पालना करदे होया श्री राम ने गर्भवती सीता नू अपने घरों कढ़ दिता, मर्यादा की पालना करदे होया शंभूक नाम दे जीवर दे कन्ना विच शीशा पिघला के पा दिता, क्योंकि वेद मंत्र सुनना शूदर लई गुनाह सी। मर्यादा बन चुकी सी, बहु गिणती विच अगर प्रजा कुछ कहेगी तो राजे नू मनना ही पाएगा, तो सीता नू घरों कढ़ना पाया, जबकि निर्दोष है, पवित्र है, सतवादी है, निर्दोष नू भी मर्यादा सजा दे देवे, ए श्री कृष्ण नू काबले कबूल नहीं सी। जीवन नू लीला दी तरह लो, मर्यादा बोझ ना बने, सिर दा भार ना बने कि सिर नू दबा के रख दे। तो इस तरह ये द्वापर युग एक जवान युग। कॉलेज दे प्रोफेसर आए श्री कृष्ण, किसी विशेष यूनिफॉर्म दी लोड़ नहीं और वर्दी दी लोड़ नहीं, किसी खास मर्यादा दी लोड़ नहीं। जीवन एक लीला है, जीवन एक तमाशा है, और लीला दी तरह जीवा, पर लीला भ्रष्ट ना कर देवे। जीवन दा लक्ष्य उच्चा इखलाक बनाओ, उच्चा आचरण बनाओ, पर जीवन नु फिर भी रास लीला दी तरह लेना। कल युग एक बुढ़ा युग, बिरध अवस्था, बुढ़े तोते नु पढ़ाण लई आए धन गुरु नानक। मर्यादा सिर दा बोझ होवे तलांजली दे दो, पर लीला भ्रष्ट कर देवे। और वाकई लीला ने भ्रष्ट कर दिता। अगा चल के मंदिर देवदासियां दे अखाड़े बन गए। मंदिर दे मांस ते शराब आम चलन लग पिया, और जो थोड़े रूप च अजे भी मौजूद है, काली दा मंदिर, कुमुखिया देवी दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दा मंदिर, उजैन दे भैरव काल दे मंदिर दे आज भी शराब दा प्रसाद है और शराब चढ़ाई जाती है। कुमुखिया देवी गुवाहाटी दा मंदिर, काली दा मंदिर कलकत्ते दा, दिन भर मांस दा प्रसाद है और सवेरे सवेरे संडे बकरे वड के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुल गए ने। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर। धर्म दे नाते वैश्याले बन गए मंदिर। धर्म दे नाते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी, क्योंकि सब कुछ धर्म दे नाते होया। राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए। सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च वी पानी आया। देश दी सारी दौलत, देश दा हुसन सब मंदरां दे च सी। सब कुछ नूं छड के वो मंदिर ही लुटते रहे, और मंदरां दे चों उन्हां नूं सोने दियां मूर्तियां, हीरे जवाहरात प्राप्त होए। देवदासियां दे रूप दे च हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई। इसे नूं ही बन के वो अपने मुल्कां नूं गमन करते रहे, और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जब जुल्म होण लग पे, और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों, जावरां दी तरफों, जरवाणियां दी तरफों, और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है, पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नू मर्यादा दिती, मर्यादा नू लीला दिती। गुरुद्वारे विच भी राग आए, संगीत आए, पर मर्यादा दे। पदार्थ आए लंगर दे रूप दे, पर मर्यादा दे। धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे, मर्यादा दे रूप दे। पर ये मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे। राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताके जीवन देच रस बनिया रवे, और रस मर्यादा देच रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया, वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है। पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है। वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नूं जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी होई, सुख लैंदी होई, अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे। ये दो किनारियां दे बंधन दे चले, और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए, संतोख ते दया। धौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखया जन सूत, अपने विच संतुष्टि ते दूसरे ते दया। ये उपदेश, ये संदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज का वाकई ये उपलब्धि ते ओही है जो गर्भकाल दे बच्चे दी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख दी दुनिया तो जात पात हटा दिती, मजहब हटा दिता, वर्ण बेख हटा दिते, आश्रमां दा बोझ हटा दिता, भाषा दी वितकरे भी हटा दिते, मुलुक दी तंगदिली भी हटा दिती, सरबद भला मनन मंगण दी, जात सिखाई और आख्या सरबद्दा भला मंगो, सारा संसार थोड़ा मुल्क है, थोड़ा मुल्क केवल थोड़ा मुल्क नहीं, सारा संसार ही थोड़ा मुल्क है, और थोड़े मुल्क दे बंदे ही केवल थोड़े बंदे नहीं, सारा संसार साडा भाईचारा है। ऐसा उपदेश संदेश कल जुग दे इस अवतारी पुरुष ने जगत दी झोली दिच पाया। जैसे बुढ़ा त्रिशनालू होंदा है ते स्याणा भी बड़ा होंदा है, जिंदगी दे बहुते उतार चढ़ा देखण करके उन्हों झूठ बोलना भी आ जांदा है और झूठ उसका चलता भी है। उम्र का तकाजा देख के बुजुर्ग है उदी हर गल नू अगले सही मलने देने बुढ़ापे करके जदके सही नहीं आती। तो यह एक प्रभाव है इस बुढ़े युग का, झूठ ते व्यापक है, तृष्णा ते व्यापक है। एक गर्भकाल दे बच्चे च की तृष्णा होगी, एक खिडौणिया नाल खेड़दे बच्चे दे अंदर की तृष्णा होगी। हाँ जवान दे अंदर हो सकती है और बुढ़े दे अंदर कई गुणा ज्यादा हो सकती है। ये तृष्णालु युग, ये झूठा युग और ये बहुत स्याणा युग, इसनों गुरु नानक ने आख्या तो सिख है सिखना है, जे तो कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि बुढ़े नू सब तो वड्डा माण ये आउंदा है मैं सब कुछ जानता, इस जवान नू की पता है, इस बच्चे नू की पता है। वाकई एक बिरद दे सामने जवान ते बच्चा अनजान ने, पर वाकई भगवान दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है, सच दे सामने एक बुढ़ा भी अनजान है। लिहाजा एहसास कराया तू सिख है, तेरे अंदर ये भाव पैदा होवे मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता। इस भाव तो शिक्षा दीक्षा आरंभ की थी गुरु नानक ने, पर शिक्षा दीक्षा बोझ ना बने गा के शिक्षा दिती। रबाब दी धुन नाल अपने दिल दियां तरबां मिलाईयां, रब्बी संगीत नू जन्म दिता और आपने इस ढंग नाल समझाना शुरू की था। आलम कहिंदे ने गुरु नानक ने योग साधना नहीं की थी, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं कीते, गुरु नानक ने धोने नहीं तपाए, गुरु नानक ने वर्त नहीं रखे, गुरु नानक दा तीर्थां दे रटन दे कोई विश्वास नहीं, गुरु नानक ने केवल प्रभु दा गीत गाया है गाउण दे च विश्वास है, पर इतनी एकाग्रता नाल गाया, इतने रस विभोर होके गाया, इतने प्राणा नाल गाया कि गाउणा ही जप बन गया, गाउणा ही तप बन गया, गावना ही जोग बन गया, गावना ही प्रभु दा रोग बन गया, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। कीर्तन गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति दा मुख वसीला बन गया, सिर ते बोझ ना बने प्रभु दा दर्श गावदे आया प्राप्त करिए। अगर परमात्मा आनंद है ते उस दे दर तक पहुंचन दा वसीला भी रस होवे, आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे, तो इस तरह रबाब दी धुन ते वक्त दा राग वक्त दी रागनी गा गा के आप जगत नू शिक्षा देंदे रहे, दीक्षा देंदे रहे और आपने मनुख की दुनिया चो जात पात नू एक पासे कर दिता, वर्ण वंड नू भी एक पासे कर दिता। मनुख केवल मनुख है, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं, जीवन तो धार्मिक होवेगा, जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं, हाँ जीवन तो ब्राह्मण हो सकता है, जन्म तो किसे नो शूदर ना आखो कोई शूदर नहीं, जीवन तो शूदर हो सकता है। और इस तरीके दी शिक्षा दीक्षा मनुख दी झोली दे पाई, जात पात दे सारे वितकरे हटा दिते और आख्या सिर्फ जोत नाल जुड़ो जात नाल नहीं, एक पासे रखो जात नो जोत नाल जुड़ो। शरीर सारियां दे अलग अलग ने, असी देखते हैं एक शरीर दा मास दूजे शरीर दे फिट करना बड़ा औखा है, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है। मन भी अलग अलग ने, किधरे किधरे कोई दो मन एक हो जाते ने, दो मनुखां दी विचारधारा किधरे एक हो जाती है, सारे संसार दी विचारधारा भी एक नहीं हो सकती। हर एक दा तन अलग अलग है, हर एक दा मन अलग अलग है, पर सारियां दी आत्मा ते इक्को ही है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हर एक दे अंदर आत्मा वेखो वो एक है, आप दा संदेश ते उपदेश भी एक है, सारे ही एक ने, सारे ही एक दे विच ने, सारियां दा मालिक एक है। तो जात अलग अलग नहीं हो सकती, मजहब अलग अलग नहीं हो सकते, सारियां दा वरण धर्म वेख एक ही है और वो परमात्मा दा स्वरूप, परमात्मा दा स्वरूप जैसा सानू मिले है उसे रूप विच अपने आप नू जो है रखो और अपने अंदर ये भाव रखो कि सीखना है, मैं अजे भी सीखना है, मरदे दम तक सीखना है। अगर ऐसा भाव अंदर बनया रहे तो मरदे दम तक उसकी पात्रता बननी रहती है और परमात्मा दियां बख्शिशां उन्हों मरदे दम तक प्राप्त होंदियां रहिंदियां ने। चार युगां दी ये विचारधारा गुरबाणी नमुख रख के तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे समक्ष भेंट कीती है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Family Care Pharmacy.
3: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स, हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
6: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट, तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है। इस नू खरीदन या वेचन लई तुहानू चाहिदा है एक अजिहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजिहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वध दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन। मार्केट दी पूरी समझ नाल तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरनगे गुरदयाल सिंह बाद। सो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह लई अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू 604-351-5511 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-351-5111।

कल जुग बीज बीजे बिन नावे तब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुरु पूरा पाया मन हृदय नाम लखाए जियो। कल जुग हर किया पग त्रै खिस किया पग चौथा टिके टिकाए जियो। एक पैर रह गया प्रभु दी कीर्ति हरि दा जस गायन करना। इससे ही कलयुग विच धर्म एक पैर दे टिक गया, बाकी ते सब कुछ उड़ पुड़ गया। कलयुग दी व्याख्या द्वापुर त्रेते ते सतयुग दी व्याख्या धन गुरु रामदास जी महाराज समय दे रूपरेखा दे नाप तोल के इस तरह जो है बयान कर देने और अपना फैसला इंज देने ने। कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया। कल युग दे कोई भी बीज मनुख बीजे जत दा सत दा कर्म दा और तरह तरह दे साधनावां दा, लेकिन नाम ना जपे। कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया। ऐसा मनुख ते सारा ही नफा ते मूल गवा बैठेगा, क्योंकि मूल ते गल सी प्रभु दा नाम उते जपना ही नहीं। और इस तरीके दे नाल व्यर्थ दे कर्मां विच फस के रह गया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने समय दी रूपरेखा विच जो युगां दा चित्रण कीता वो इस तरह है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों अपने ढंग नाल बयान करदे ने और भगत रविदास जी महाराज से इत्थे तक कहंदे ने सतयुग सत त्रेता जगी द्वापुर पूजा चार तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। ठीक तिन्ने युग अपनी थां से महान होवनगे और मौजूदा ए कल युग इस देश से उधार केवल प्रभु दे नाम ते जप ते खड़ा। कल केवल नाम आधार। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह फरमान करते ने सतयुग त्रेता द्वापुर भणिए कल युग उत्तम युगा मान। ये सब तो श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है, महान युग है। किस पक्ष तो महान युग है, क्योंकि जगत देखते प्रचलित यही कुछ है कि ये युग निषिद्ध है, ये युग माड़ा युग है, ये युग सब तो निचले दर्जे का युग है। जबकि धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने सतयुग त्रेता द्वापुर भणिए कल युग उत्तम युगा माही। एक उत्तम युग है, एक श्रेष्ठ युग है, एक महान युग है। आखिर किस पक्षों ये लंबी चौड़ी विचारधारा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। समय अस्थान के मानसिक अवस्था दे चार युगां की जो व्याख्या है धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने ढंग नाल फरमान करते हैं। प्रथम समय दे जो रूपरेखा है लंबे चौड़े शब्द दिखों कुछ पंक्तियां मैं आप जी के सामने रखा जो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मारू राग विच उच्चारण कीतियां ने। सतयुग सत संतोख सरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सतयुग साथ कहे सब कोई सच वरते साचा सोई। झूठ बोलना सतयुग दे मनुख नु आवंदा ही नहीं।

0: उसका एक मूल कारण मनुख संतुष्ट से लोड़ा सीमित सन और लोड़ा की पूर्ति प्राकृतिक रूप दे हो जाती है। प्रकृति सब की झोली दे लोड़ा की पूर्ति पा देंदी सी कर देंदी सी। जंगल दे फल फुल शिकार इत्यादि खुले रूप दे उपलब्ध से आबादी थोड़ी सी सैकड़े मील तक वसों नहीं सी झूठ बोलन लई गुंजाइश ही नहीं सी। त्रेते धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुविधा सुखी। त्रेते देख विश्वास की थां ते दुविधा आ गई लिहाजा धर्म की एक कला नाश हो गई विश्वास भरोसा सिदक ये नहीं रहा। मन में दुविधा पैदा हो गई है कि नहीं दुविधा इसनों कहते हैं। दो पासे भी धावना पैदा हो गई है कि नहीं है। दरअसल जिस वक्त मन में ये ख्याल होता है तो मनुख ईश्वर के नेड़े होता है उसके मन में रस होता है टिकाव होता है खेड़ा होती है खुशी होती है। और जब दूसरा भाव दुबदा दूसरी धावना पैदा हो जाती है शक शायद नहीं है उदों ये दूर हो जाता है। और दूरियां ते दुख नु जन्म देंदियां दूरियां बेरसी नु जन्म देंदियां दूरियां कल कलेश ते संताप नु जन्म देंदियां ने। महाराज कहंदे ने दुबदा दा जन्म हो गया विश्वास की लत टुट गई। दया दुआपुर अधी होई गुरमुख विरला चीने कोई। दुआपुर देखते दया मानो अधी ही रह गई कोई विरले गुरमुख ब्रह्म दा चिंतन करदा सी कठोरता इस हद तक वध गई कि भरी सभा देच भी भरजाई नो नगन कीता जा सकता है। पंज भिरावां नो चचेरे भिरावां नो जंगल देच पजाया जा सकता है और उना दा सब कुछ खोया जा सकता है उना नो बर्बाद कीता जा सकता है। दया कठोरता का रूप धारण कर गई। जब पिरा के दया नहीं तो फिर गैरां नाल व्यवहार की होवेगा। ये द्वापर का नक्शा धन गुरु नानक देव जी महाराज समय की गति के मुताबिक साढ़े सामने रख देना। कली काल में एक कल राखी बिन गुर पूरे किने न भाखी। कलयुग देखते केवल धर्म दी इक्को ही कला रह गई प्रभु दी कीर्ति। पर बिना गुरु दी समझ तो ये किसी ने भी बाखी नहीं भाव ये कीर्ति किसी ने भी उच्चारण नहीं की। उन धर्म सिर्फ इक्को ही कला तो रह गया प्रभु दी कीर्ति गायन करने नाम जपना प्रभु दे गुण गाने। बस कलयुग दे यही एक कला रह गई। समय की गति गुरु नानक भी अपने ढंग नाल नापदे ने पर मेरे पातशाह इसनों बड़ी विज्ञानक सचाई उसनों साढ़े सामने जो है रखते ने। समय की दुनिया युगां दी वंड और इस तों बाद मन दी दुनिया दे समय दी वंड इस शब्द आसा दीवार दे श्लोक दे रूप दे सत्संगियां नूं कंठ है। नानक मेरे शरीर का एक रथ वाओ, मेरु जैसा ये शरीर, मेरु सुमेर पर्वत तो शब्द ले आ गया है। सुमेर पर्वत माला दे सब तो उच्चा मणका हुंदा है, मेरु मणका। सारे शरीरां दे चां शरीर मनुख दा मेरु शरीर है, सुमेर पर्वत है, माड़ी मोटी पहाड़ी नहीं, सुमेर पर्वत है। ये महान शरीर है। महाराज कहते रहे ये जो महान शरीर है, ये जो मेरु मणका है, ये जो सुमेर पर्वत है, इसते जीवन दे साधन, इदी तर्ज जिंदगी समय समय नाल बदलती रही है और विचारां दे आसरे ते बदलती रही है। युगां दी तब्दीली खड़ी मनुख ते ही है। बाहर दी किसे चीज देते युगां दी तब्दीली खड़ी नहीं। रामकली राग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे, ओही चंद्रमा ओही तारे ने, ओही गंगा है, ओही सागर है, ओही धरती है। और हजारां साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख हुंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ने। ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन, अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करदे ने, पंज तत्त कर तुद सब सिष्ट साजी, कोई छेवा करेओ जे किछ कीता होवे। तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाओ कैसे। आखिर सब कुछ ओही है, फिर इसनु कलयुग क्यों कहंदे ने? विचार बदल गया, जीवन शैली बदल गई, आग गुणा कल आइए। महाराज कहते हैं मैं कहने लगा कलयुग आया है, कलयुग आया है। किवें पहचान करिए, जे को सत करे सो छीजे, तप घर तप ना होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही कलयुग दे लक्षण ने। कि कोई उच्चा इखलाक धारण करन दा प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन बतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ इसनु सतवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना होई, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाव ले बदनावी, कल के लखन एही। जो नाम जपेगा बंदगी करेगा उनु मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ए कल जुग दे लक्षण नहीं। महाराज कहते जिस सिकदारी किसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग दी होर रूपरेखा बयान करदे होया महाराज कहते ने, किसे पख दा भी जो चौधरी है खुआर होवेगा, कोई भी जिम्मेवारी चुके, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जरीलो खुआर होवेगा। और उसनों अक्सर चाकरां तो डर के रहना पड़ेगा, पर जा तो डरदे हुए राजे जीण गए। जा सिख दारे पवे जंजीरी ता चाकर हथों मरना, जे किधरे चौधरी बंदना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों ही उसकी मौत होवेगी, सेवक दे हथों मालिक दी मौत होवेगी। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੀ ਬੈਰੋਨੀ ਰੰਗਤ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਧਾਰਨੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਚੀਜੇ, ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਲ ਕੇ ਲੱਖਣ ਇਹ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਖਣ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਰੋਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਦੁਆਪੁਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਬੋਧ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ, ਕਿਤਨੇ ਸੰਤ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਿਤਨੇ ਭਗਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਭਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਇਸਨੂੰ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਰਜ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਯੁੱਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪੁਰਮਾਇਓ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ 52 बोने अवतार त्रेते दिच श्री कृष्ण रंसी द्वापर दिच श्री कृष्ण यादव वंशी और कल युग दिच धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश दिच उजागर हो समय दी रूप रेखा दिच भट्ट अवतारा नूं इस तरीके दे नाल मंदे ने और समय दा बैरूनी प्रभाव जन्म साखी दे इन चित्रे होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने बाले नूं मर्दाने नूं समझांदे ने ए युग कैसा है। जे बैठा ता आखिए बैठा सत्तर घट जे चला ता आखिए छार गया सित घट। जे मैं चलदा हां ते कहिंदे ने इते सिर देते छार पा के चला गया मिट्टी पा के चला गया ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहिंदे ने इते बस सत्तर बैठ के ही बैठा होया सत्तर मल के ही बैठा होया इते सिर्फ बैठा ही रहिंदा है। जे बैठा ते आखिए बैठा सत्तर घट जे चला ता आखिए छार गया सिरगत। जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखिए ऐस घट ना ही मत। जे मैं बोलदा ही नहीं खामोशी धारण कर लेना तो कहिंदे ने इहदे कोल कुवते गोयाई नहीं है इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है इहदे कोल अकल ही नहीं है। पर जे मैं मौका महल गल करा बातचीत करा तो कहिंदे ने ते बड़बड़ करदा पै बस बोली जांदा है बोली जांदा है। जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखिए ऐस घटना ही मत। काई गाल ना मेवनी करता ही रखे पत बस दुनिया दा कम हो गया है निंदा करने और निंदा करन लई बहाने लबने। चल रहा है मनुख ले खाक उड़ा के चल रहा है बैठा है मनुख बस बैठा ही रहिंदा है बोले बड़बड़ करदा पै चुप है मूरख है गर्ज के निंदा करन दे बहाने। इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहे है और निंदा करन दे बहाने लगता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहिंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इस दा कोई इलाज भी नहीं है। औखद सबे की तेन निंदक का दारू ना है। निंदा ऐसी जहर है ऐसी कुड़त्तन है जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना आवे। हे प्रभु मनुख ऐसा निंदक हो गया और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं निम इतनी कौड़ी नहीं जहर इतनी कौड़ी नहीं जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान कर देने दौलक दुनिया वाजे वाज नारद नाचे कल का भाव जति सती कह राखे पाओ। इस युग दे च मन ते नारद बन गया है ते नारद दा कम की है चुगली इधर दी उधर उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख दी तर्ज जिंदगी ऐसी बन गई है महाराज कहिंदे ने मनुख दा मन नारद है नारद नाचे कल का भाव जति सती कह राखे पाव। ये जत ते सत केड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा। मन ते नारदी होया पे है, मन ते चुगल बखील होया पे है, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पे है। ए कलयुग दा प्रताप, समय दा प्रताप। ए धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे करदे ने। दरअसल गली दे कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख सुतंत्रता दे नाल अपना रस्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक तो उस विच जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठिया की भीड़ इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी और कर्म कांडिया की भीड़ इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ का कर्म कांडी हो जाता है। और ये एक मन का सुभाव है कि इहदे उत्ते अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ का। मनुख कहिंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने ते गलत किस तरह हो सकते ने। दरअसल बहुत गिनती ही गलत हो सकती है। किसी समय महात्मा बुद्ध ने बड़ा कीमती कौल अपने चचेरे भरा दे सामने रखिया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। बहु गिणती ते हमेशा ही गलत होवेगी। भीड़ हमेशा बुरियां दी आउंदी है, नेक ते बहुत थोड़े ही। गीटियां ते पत्थर आम मिल सकदे ने पहाड़ां ते, हीरे ते किधर किधरे। संख ते सिपियां सागर दे तट ते भी लभ पैंदियां ने पर मोती ते किधरे किधरे ही उपलब्ध हो सकदे ने। किकर ते सारी धरती दे च मिलदा है पर चंदन दा वृक्ष ते किधरे ही किधरे। जितने मिकदार दे च कोयला निकलदा है पहाड़ां दी कुख दे चों उतना सोना नहीं। तो कल युग एक कलेश भरिया युग और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़। तो मनुख दा मन कलेशमयी हो गया, झूठियां दी भीड़ दे च झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ दे च निंदक हो गया, लोभियां दी भीड़ दे च लोभी हो गया। इस तरह दी भीड़ दे च मनुख जी रहा है। नारद नाचे कल का भाव जति सती कह राखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहा है, चुगल खोर हो गया। इत्थे जति अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती जल रही है। इत्थे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ये समय दी रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख दी तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग दी व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान कीती है, इन्हां शब्दां दी व्याख्या मैं पेश करन लगा। और ये आसा दीवार दा श्लोक है और भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी जिस विच भाई गुरदास जी कहंदे ने जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए, फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे ते इसनु समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलदा रहा है, बार बार जन्म होंदा रहा है और जन्म होंदा रहा है वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलदा ही रहेगा, जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहिंदे ने मन ऐसा है या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलन लग पई और प्रार्थना दे शुकराना धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जाते हैं। पर वासना तो चलती है, अगर वासना पिछले जन्म दे नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकता। इति वासना बद्धा आवे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं जुग जुग मेर शरीर का, हर युग देख ए मेरा मेरू शरीर, ए महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आंदा रहे है। अक्सर पुन ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख का अगला जन्म मनुख का ही आंदा है। पाप ही पाप होन पुन ना होवन तो मनुख पछड़ जाता है, पिछे मुड़ जाता है। पर ऐसा तो कोई पापी नहीं कोई थोड़े बहुत पुन ना करदा होवे। कबीर सच कह रहे ने पाप पुन दोए बहल बिसाए पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासा दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीदता है कुछ पुन खरीदता है। तो पाप पुन बराबर होण करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आंदा है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करदा है जीवन दी लालसा करके, पुन करदा है इस जीवन तो मुक्त होण वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते हैं तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होता है। तर्जे जिंदगी दे तौर तरीके जो बदलते हैं, इस तब्दीली नो धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस ढंग नाल बयान करते हैं मैं अर्ज कर रहा हूं।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख

सच्चे परवरदिगारा। लेकिन आम शायर विच ते रब्बी शायर विच फर्क बड़ा है, अंतरा बड़ा है। ऋषि जो संस्कृत का लफ्ज है इहदे अखरी अर्थ बनदे ने कवि, ते कवि दा जे संस्कृत विच अनुवाद करांगे तो बनेगा ऋषि। ऋषि जो है वो कवि है, जो कवि है वो ऋषि है, लेकिन फिर भी जमीन आसमान दा अंतर है। जिस दी कविता अनुभव तो आवे वो ते ऋषि है, ते जिस दी कविता सिर्फ सोच दी मुस्तहिक है, जो दिमागी तल तो निकलती है, बस वो शायर है, वो सिर्फ कवि है, वो ऋषि नहीं। अनुभव तो निकली हुई कविता इंज है जैसे झरने दा निकलिया होया जल निर्मल होंदा है, शफाफ होंदा है, ठंडा होंदा है, उहदे च रवानी होंदी है। पर जो दिमाग चो कविता निकलती है वो एक हाउस दा पानी है, छपड़ी दा पानी है, गंदे होंदिया देर नहीं लगती। इस वास्ते असीं देखदे हां आम कविया दियां कवितावां पुरानियां हो जांदियां ने। एक दफा सुनीए, दो दफा सुनीए, फिर तीजी दफा सुनन नूं दिल नहीं करदा। पर महापुरुषां दी बाणी रोज रोज ही पढ़िए कदी पुरानी नहीं हुंदी। मनुख पुराना हो सकदा है, पढ़न वाला पुराना हो सकदा है, कलाम पुरानी नहीं हुंदी, बाणी पुरानी नहीं हुंदी। कारण कि वह अनुभव तो निकली हुंदी है, वह निरी दिमाग तो नहीं निकली हुंदी। आम विचारकां दा कहना है कि जिहड़ी गल सिर्फ जबान तो निकले वह कन्नां तक पहुंचदी है, जो दिमाग तो निकले वह दिमाग तक पहुंचती है, और जो आत्मा तो निकले वो आत्मा तक पहुंचती है। ते आत्मा तो ओही गल निकलती है जिसनू आत्मा मन है। इस गल नू मोहम्मद इकबाल ने भी कबूलिया, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जिहड़ी गल दिल दे डूंघे तल चो निकलेगी वो लाजमी दिल तक पहुंचेगी, उसका बहुत गहरा असर होगा। तो महापुरुषां दे बचन बहुत डूंघे तल तो निकलते हैं, इस वास्ते कदी पुराने नहीं होंदे। आम कवियां दियां रचनावां पुरानियां हो जांदियां क्योंकि तल बहुत डूंगा नहीं, गहराई बहुत महान नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नूं कवि कहिंदन, ते कहिंदन हे प्रभु मैं तेरे दर ते आया कुछ गीत लैके कुछ संगीत लैके। मेरे देखे ते परमात्मा दे दर तक पहुंच ही हो ही सकदा जिहदे कोल गीत होवे, जिहदे कोल संगीत होवे, जिहदे कोल रोणा है, जिहदे कोल पिटना है, जिहदे कोल वासना है, जिहदे कोल दुखड़े ने, उहदा परमात्मा दे दर तक पहुंचना बड़ा औखा है। परमात्मा दे दर तक ते उही पहुंच सकदा है जो गा सके, गीत गा सके, और कविता ते संगीत दियां धुना अलाप सके। गुरु नानक गाउंदे गाउंदे सो दर तक पहुंचे ने। गुरु नानक ने गा गा के प्रभु नूं रिझाया, गुरु नानक ने गा गा के ठग्गां नूं सज्जन बनाया, दैंतां नूं फरिश्ता बनाया, और मनुखां दे अंदर प्रभु दी जोत जगाई है। गुरु नानक वाहिद संसार दा ऐसा धार्मिक प्रचारक है जिसने गा गा के मनुखता नूं परमात्मा दे नाल जोड़िया है। ये ठीक है परमात्मा दा कोई बहुत गहरा तप गुरु नानक ने नहीं किया, गुरु नानक ने योग साधना नहीं साधी, गुरु नानक ने प्राणायाम नहीं किया, गुरु नानक ने जल धारा नहीं की थी, गुरु नानक ने कोई लंबी चौड़ी भगती नहीं की थी, कीर्तन किया है, गाया है, पर इतने गहरे तल तो गाया है, इतनी एकाग्रता दे नाल गाया है कि गुरु नानक दा गावना ही योग बन गया, गुरु नानक दा गावना ही तप बन गया, गुरु नानक दा गावना ही भगती बन गया। पातशाह दी बड़ी सुंदर पंक्ति भी है, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई, जो मैं तेरा कीर्तन गाया है बस यही जोग है, यही भगती है, यही योग दी साधना है, यही योग दियां विधियां ने। तो साहिब कहिंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा मैं तेरे दर ते कुछ गीत लेके आया, कुछ संगीत लेके आया, तू सुन। ढहों ढाडी हर गुण गावदा जे हर प्रभ भावे, प्रभ मेरा फिर थावरी होर आवे जावे। सवाल यह पैदा होंदा है कि तू परमात्मा दे दर दे गीत संगीत लेके क्यों आया है, किसी होर दे दर ते जा। साहिब कहिंदे होर कित्थे मैं लेके जावा, परमात्मा ते थिर है, नैचल है, बाकी ते सब चलायमान है, मैं कित्थे गावा। शेख शरफ सूफी फकीर ने गुरु नानक देव जी महाराज ते सवाल कीता सी, शुमा मुकाम कुजा।

जे विद मन को संसा चूकै पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अधिक डरों मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरों गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो पश जो उदर परों कौ नानक प्रभ बिरद पछानो

0: ਦੇਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ
0: ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵਹੇ
0: ਜਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ
0: ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਇਐ ਧਿਆਨ ਜੋਗ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹੇ
0: ਜਿਸੇ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਲ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ
0: ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ
0: ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਰੱਬ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੋ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ
0: ਨਿਵਲਾ ਬੁੱਤ ਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ
0: ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ
0: ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ
0: ਮਨ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀਜੈ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉ ਆਲਸ ਕੀਜੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਰ ਸਸਵਾਰੀ
0: ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਭੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ
0: ਰਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ
1: ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ
0: ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤਿ ਸਹਿ ਧਿਆਈ
1: ਇਸੇ ਧਿਆਈ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ
0: ਨੀਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤਾਰੀ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਤ
0: ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖਿਆ ਵਿਸਮਾਦ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਹੇ
0: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ
1: ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ
0: ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
0: ਇਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ
0: ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਜ
1: ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ
1: ਆਪ ਜਪਾਈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ
0: ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ
1: ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤੂਤਨ ਹੋਏ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ
0: ਆਪੋ ਕਛੁ ਨ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾਥ
0: ਨਾਨਕ ਇਨਕੇ ਕਛੁ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ
1: ਅਗਮ ਅਗਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਮੁਖਤਾ ਹੋਏ
0: ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਏਕੋ ਉਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨ ਕਤ ਹੂੰ ਭਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨੀ ਬੈਰ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੈ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਵਿਆਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਪੜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾਈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਤਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਬੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੋ ਬਸੁਰ ਦੇਵਾ
1: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸਭ ਜਨਮ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ
0: ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ
0: ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਘਰ ਘੜ ਜੀਠਾ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੈ
0: ਜਿਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ
1: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਭੇਖੈ
0: ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ
1: ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ
0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ
0: ਜੈਸੇ ਜਲ जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीर एक
0: ज्यो बसदा को खुदै को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक ज्यो भाव का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं महान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जिन प्रभु आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभु संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में भिखै भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्स
1: कत्रिया रूप न भिखै नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू के निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद भिखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
0: नानको वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्ण प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जोन न आवे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मै जाने अस्तूर
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उरता रहे
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितने न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम किस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोची परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हिता वै
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिकाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताई साई जुगत
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर रखे तैसा तन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरियो आप होय अंत तरंग
0: लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारावार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विधि अनेक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी,
0: कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी,
0: कई कोट बन प्रमय उदासी,
1: कई कोट वीर के स्रोते,
0: कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धारी,
0: कई कोट कब काव विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावहे,
0: नान करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी,
0: कई कोट अंध अज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर,
0: कई कोट अभिग आत्म ने कोर,
1: कई कोट पर दर्प को हिरहे,
0: कई कोट पर दुख न करे,
1: कई कोट माया श्रम माहे,
0: कई कोट पर देश परमा है,
1: जित जित लाभ होते तित लगना,
0: नानक करते की जाने करता रचना,
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प उपाए,
0: कई कोट पात्र वृक ने बजाए,
1: कई कोट पवन पानी में संतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट शशि सूर नखत्र,
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र,
1: सगल समग्री अपने सूत धारे,
0: नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार,
1: कई कोट राजस ताम सातक,
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति अर शास्त्र,
1: कई कोट की रतन समुंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट की ये चिर दीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख के निर्पिशाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सु कर मृकाच,
1: सबे नेरे सब हूं ते दूर,
0: नानक आप लिप्त रे भरपूर,
1: कई कोट पाताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है,
0: कई कोट बहु जोनी फिरे,
1: कई कोट बैठ सी खाहे,
0: कई कोट काले थक पाहे,
1: कई कोट की ये धनवंत,
0: कई कोट मैं चिंत,
1: जय जय भाणा तह तह राखे,
0: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भई बैरागी,
0: राम नाम सख तिल लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोज अंते,
0: आत्म मह पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
0: जिनको मिले हो प्रभ विनाश,
1: कई कोट मांगे हैं सत्संग,
0: आप ब्रह्म तिन लगा रंग,
1: जिनको होए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेजन सदा तन तन,
1: कई कोट खानी अरखंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट होए अवतार,
0: कई जग की न विस्तार,
1: कई बार बसरियो पासार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु भांत,
0: प्राप्त होए प्रभ माहे समात,
1: ताका अंत न जाने कोई,
0: आपे आप नानक प्रभ सोए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: जिनहो वत्या तन प्रगास,
1: कई कोट तत् के देते,
0: सदन हारे एको नित्रे,
1: कई कोट नाम रस पीव है,
0: अमर पय सर सद ही जीव है,
1: कई कोट नाम गुण गावे,
0: आत्म रस सुख सहज समावे,
1: अपने जन को साथ साथ समारे,
0: नानको हे परमेश्वर के प्यारे श्लोक,
1: करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई,
0: नानक तिस बलहार ने जल थल मई अल सोए, अष्टपदी
1: करण करावन करने जोग,
0: ज्योत भावे सोई होग,
1: फिर मैं ताप उताप नहारा,
0: अंत नहीं किस बारा वारा,
1: हुक्मे तार अतार रहावे,
0: हुक्मे उपजे हुक्म समावे,
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार,
0: हुक्मे अनेक रंग प्रकार,
1: कर कर दिखे अपनी वडियाई,
0: नानक सब में रहा समाई,
1: रब भावे मानो गत पावे,
0: रब भावे ता पाथर त्रावे,
1: रब भावे बिन सास ते रखे,
0: रब भावे ता हर गुण पाखे,
1: रब भावे ता पथ उधारे,
0: आप करे अपन विचारे,
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी,
0: खेले से अंतर जामी,
1: जो भावे सो कार करावे,
0: नानक दृष्टि और न आवे,
1: ओ मनुख ते क्या होए आवे,
0: ज्योतिष भावे सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले,
0: ज्योतिष भावे सोई करे,
1: मन जानत बिठिया मह रचे,
0: जे जानते अपने आप बचे,
1: भरमे भूलै दह दिस धावे,
0: नमक माही चार कुंठ फिर आवे,
1: कर कृपा जस अपनी भक्त दे,
0: नानक ते जन नाम मिले,
1: छिनवे नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बख्शीस,
0: ताका लेखा न गणे जगदीश,
1: जीओ पिंड सब तिसकी रास,
0: कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बनत आप बनाई,
0: नानक जीव देख बढ़ाई,
1: इसका बल नाही सहार,
0: कल करावन सब को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जीओ,
0: ज्योति स्वभाव है सोई फन थी,
1: कब हूँ ऊंच नीच मैं बस है,
0: कब हूँ शोक हर करंग हस है,
1: कब हूँ निंद चिंद व्यवहार,
0: कब हूँ उपकाश प्याल,
1: कब हूँ बेता ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिलावन हार,
1: कब हूँ नृत्य करे बहु भांत,
0: कब हूँ सोए रहे दिन रात,
1: कब हूँ महाक्रोध विकराल,
0: कब हूँ सर्व की होत रवाल,
1: कब हूँ होए बह बड़ राज,
0: कभू भिखारी नीच का साजा,
1: कभू अब कीर्त में आवे,
0: कभू भला भला कहावे,
1: ज्यों प्रभु राखे ते भी रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कभू होए पंडित करे बख्यान,
0: कभू मौन तारी लावे ध्यान,
1: कभू तट तीर्थ स्नान,
0: कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कभू पीठ हस्त पतंग होए दिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे,
0: जो प्रभु भावे तिवे न जावे,
1: जो भावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न कोए,
1: कभू साध संगति पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मन तन नाम रते एक रंग,
0: सदा बसै पर ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना,
0: ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना,
1: मिट गए गबन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक,
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले,
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंता होए कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का होए विनाश
1: सबते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: किसे न बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह प्रवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सगले ब्रथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जहाँ का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस कौशक नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब ता रे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना नक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: सब ते दूर सब हूं कै संग
1: दूजा देखे करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप पीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पेन का हो किश होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आर जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिक न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उद्यान प्रमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: साथ संग अग्न सागर तरहो
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरु पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग भर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल यह रतन
0: संत कमाप्त हो उदार
1: आप त्रैलोक का निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजय
1: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय
0: रखे गोपाल महांत कह माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेवा
0: आदि जाल विकास के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक नभी खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रकट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ए फल तिस जन कै मुख भनी
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: एहो निधान जपै मन कोई
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सकल मतांत केवल हर नाम
1: मोहित भगत कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटे
1: संत कृपा ते जमते छुटे
0: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवार
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सबते ऊज तांकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुख मनी
0: सबते

दे मंगे से सगुण सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रब बेकार एक होंदा खा चले जाओ तिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया लोहाया कराया कार।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: दीपालोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नान का सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वर तिस तिस दीपान पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग।
1: महला पहला लख ने खेन चंगिया लख पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुट्टे हे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू देहत से मिले सच ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: पहला पर पर गड्डी लदिए पर पर परिए साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड्डिए खात परिए है जेते वर्ष वर्ष परिए जेते मास परिए जेती यार जा परिए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

अच्छा सच रहे सबको सच समावे रिग कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैसूर नाले प्रस्त जाहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद कर नीच

ओडिशा महोदय कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

महला पहला जे सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए सूत

पौड़िया पिकरणा की ओकला पे हित धारिये देख किता अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चल सी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: Brinde namo bij bije namo raj sang tam sang sand rupe namo param tatang tatang sarupe namo yog joge namo gyan gyane namo mantra mantre namo tyan tyane namo jyoti jyoti namo gyan gyane namo pooje pooje namo paan paane namo kalah karta namo sand rupe namo indre indre anadam bhoote kalankar rupe alankar alanke namo asyaase namo bank banke apangi srupe anangi aname tre pangi tre kale anangi akame ek achri shand ajay alay apay abay apu aju anas gas ganj panj alakh pakh kal dyal alekh pekh anam akam agah tah nathya pramathya juni amuni narage na rangi na rupe na rekhe karmang parmang aganje alekhe ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਗੰਜਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰਕਾਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਧਰਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਵਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰ ਪਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘਰ ਯੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧਾਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮੱਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੁਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਅਤ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਰੇ ਪਾਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਹਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬੇਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਪਏ ਭੂਪਤ ਅੰਧਕਾਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਿਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕਾਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸਿੱਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਿਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸੁਬਾਨ ਕੇ ਪਿੱਖ ਹੈ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ ਸੋ ਦਿਸਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਲ ਸੁਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਲ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚੱਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਵਿਚਾਰ ਹਿਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ ਜਾਜਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇ ਫਨੇਂਦਨ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैर तुन पापन के बह पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जाग सतर सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नादप जाउन त्रिलोक राज करेंगे कोड स्नान गजाद गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्रीपाद के प्रास हैं पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरयो लिए साध समुद्र न लो गयो पर लोग गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लखियो हर अवाची देसा महे काहू पछाह को सीस निवायो ओब तानक पूजित है पास कुमर तानक पूजन धायो कूर क्रिया उर जीव सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बुतानक पूजित है पास को मृतानक पूजन धायो कूर क्रिया उर जीव सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबीर बाज बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दया रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरण मन रह हमारा अपना जान करो प्रात पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दे मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दया करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहाओ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी अहे चुन चुन सत्र हमारे मारी अहे आप हास दया मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हुजू सदा हमारे पच्छा श्री हस उजू करिय हो रच्छा राख ले मुह राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बान दुष्टन के हंता तमहो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिस्न प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल योगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैज छने पुजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी जीवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बाध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरी अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन है कट कट के पट पट की जन है जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताका कर पाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव। आप ही अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिज सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जेरज से दकीनी उत पुज खान बाहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमंड भयो शंकर एक ऐठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप सोयंग भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस्तोज तब सरणी परे तनके दुष्ट दुख तुहै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शुवै सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़के त मैं शरण तिहारी आप हाथ दयाले हो उबारी सर्ब ठावर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तोजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तसै व्यापत कोई अडिल सुनै गोंग जो आहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाउ निकट ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सत्रह सहस भणिजै अर्ध सहस फुन तीन किहिजै भाद्रव सदी अष्टमी रविवारा तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरित शास्त्र वेद सब बह भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखाने दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार बाही गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो

जो लरा दीन के हेता पुरजा पुरजा काट मरे कब हूना छाड़े खेत जिना सास ग्रास ना विसरे

पूर्ण सोई संत सुकाहु टल गोर सेविय अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा गौर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगै आए।

0: सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो काचन काच महला पहला
1: बड़ी बड़े निचल थाओ बड़ी बड़े जाने लाओ बड़े बड़े पूज सा पाओ बड़ी बड़े जा पुछना दात बड़ी बड़े जा पे।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

गुरदयाल सिंह बाथौर डेयरी लेके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट चौक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस. इन्वेस्ट करो 8 एकर्स अते 100,000 स्क्वायर फीट दी ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस. तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवें विच नर्सरी ते नाल नाल 5 बेडरूम हाउस टोटली रीमॉडल विद इनक्रॉन आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्वीट अते होर भी बहुत कुछ. आज ही संपर्क करो गुरदयाल सिंह बाथ नू एट 604-351-5111.

0: परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है। हर जीव नू हर जीवन नू तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनु अशरफुल मखलूकात आखे है। अगर जीवन नु नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देश पाश, जो पीछे रह गए, पाश देश रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देश रह गए, पीछे रह गए। तो मनुख तो पीछे है सारा पशु जगत, और इस पाश जगत देश, इस पशु जगत देश चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा की कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते हैं। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी यौन मने है। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मा तक, अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे है। तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नू नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी तलते ही नहीं, पंछियां देच भी ने, पशुआं देच भी ने, पक्षियां देच भी ने, और पत्थरां देच भी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालिया। पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे, जिन्हां नू कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे भी ने, उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है, गल ते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह की जिंदगी नहीं जीवदा, कई तरह का जीवन जीवदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूर्ण पुरुख उसनो कहते ने जो सामाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी का, पूर्ण पुरख, मुकम्मल इंसान, पूर्ण पुरुख वो पूरा है जिसका समाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनीतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल से पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी देच भी, इस तरह की जिंदगी देच भी समाज राजनीति ते धर्म देच भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है, शरीरक बचपना अखा नाल देखा जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखा नाल दिखाई दे जांदी है, जवान है, पर किसी दा राजनीतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिदी है, अंदर दी सोच चाहिदी है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिदी है अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया है, इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ए नहीं दस सकदी कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकदी कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है, अखां ए भी दसण दे असमर्थ ने कि ए राजनीतिक तल ते किथे खड़ा है, किथे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अग अक्सर मनुखां दी बंदी रहिंदी है, बाहर दी अखां ए दो ने, अंदर दी अख वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नूं वेख सकदी है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकदी है, वो अख बहुत गहरा वेख सकदी है, ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां। पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना, दोहे दिवे मलक बहठा आए, गढ़ लीता घट लुटेया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लबण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकार में ही हो गया, जीवन मस्या दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है त्रैनयनं, तीन नेत्रा वाला, त्रिलोचन, लोचन अखा नु कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखा ने। अक्सर हर मनुख नु असी कह सकदे हां दोए लोचन, दोए लोचन। त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिवजी नो कहिंदन त्रैनयनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनयनं, ये तीन नेत्रां वाला कहिंदे ने, ये दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है, किसे किसे नूं दिखाई देंदा है, अजे बच्चे नूं नहीं दिखाई देंदा, नवे बच्चे जन्मे नूं ते मां भी नहीं दिखाई देंदी, उन्हूं कोई पता नहीं मां है, सामने प्यो खड़ा है उसनु कोई बोध नहीं है मेरा पिता है। सामने बहन खड़ी है इसनु कोई ज्ञान नहीं है मेरी बहन है ये मेरा भरा है। अजय अखा इस दिया दो खुलन गया सहजे सहजे खुलन गया सहजे सहजे संसार की असलियत प्रगट होवेगी। पर जिस दिन तीसरा नेत्र खुलता है संसार भस्म हो जाता है निरंकार प्रगट हो जाता है। ये एक मिथ है कि शिवजी जब अपना तीसरा नेत्र खोलता सी जो कुछ सामने सी भस्म हो जाता सी। वाकई भस्म हो जाता सी संसार निरंकार का रूप दिखाई देने लग पैंदा सी संसार खत्म हो गया निरंकार प्रगट हो गया। ये तीसरा नेत्र संसार नु भस्म कर देंदा है निरंकार नु प्रगट कर देंदा है। जिस भी किसी का खुल जाए त्रिलोचन तीन नेत्रा वाला मनुख दे अंतिशकरण दे प्यास ते है ए अख मेरी खुले। इस वास्ते बहुत सारे लोग ते अपना नाम भी यही रखांदे ने मां बाप अपने बच्चियां दा नाम रख देंदे ने त्रिलोचन। तीन नेत्रा वाला भावे अजे दो अखां भी ढंग दियां नहीं खुलियां अजे संसार नूं भी देखण दे च ए असमर्थ है लेकिन त्रिलोचन त्रिलोचन धर्म दी दुनिया दे च एक शिखरमई अवस्था है। तीसरा नेत्र खुल गया तो खैर जैसे शरीरक तल्ला बचपना है जवानी है वृद्धावस्था है कोई सामाजिक तल ते भी बच्चा हो सकता है उसके रिश्तिया दे च पुख्तगी नहीं होवेगी उसके संबंधा दे च पक्याई नहीं होवेगी। बच्चा खिडौणिया नाल खेडदा है तोड़दा है समाजिक तल ते जो अजे बच्चा है सवेरे संबंध जोड़दा है शामी तोड़दा है शामी जोड़दा है सवेरे तोड़दा है। रिश्ते बनदे ने टुटदे ने बनदे ने टुटदे ने मिट्टी दे घर बनाना फिर मिटाना बच्चियां दा कम बनाना मिटाना खेड संबंध जोड़ने ने तोड़ने ने ये समाजिक तल्ला बचपना है। सवेरे रिश्ते जोड़े ने शाम नु तोड़ देते ने शाम नु जोड़े है सवेरे तोड़ देता है। तो किधरे किधरे कौमी पद्धर ते देश पद्धर ते भी समाजिक बचपना दिखाई देता है किधरे किधरे राजनैतिक बचपना राजनीति भी सारी इसे ही आधार ते खड़ी तोड़ फोड़ ते ए जोड़िया ओ तोड़िया ए जोड़िया। इस जोड़ तोड़ ते जिस मनुख दी राजनीति खड़ी है तो एक गल स्पष्ट हो गई कि राजनैतिक बचपना है धार्मिक बचपना। जो धर्म नहीं है उसनु ही धर्म समझ लेना। गुड्डी गुड्डे दा व्याह कर दे पैने बच्चे व्यर्थ ये व्याह खेल हो सकता है। जो अजे धार्मिक तल ते बचपना बचपन दे दौर चो लंघ रहे है उदे सारे कर्म खिडौणिया तो ज्यादा कुछ भी नहीं होणगे और खिडौने भी गुड्डे ते गुड्डे दे। भगत कबीर कहिंदे ने माथे ते लख हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो खिलौनिया नाल बच्चे ही खेड देने। जो धार्मिक तल ते बच्चा है राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है राम कोई सच्चाई नहीं है राम कोई हकीकत नहीं है खिलौना खेडना है मन दा परचावा सिर्फ मन दा परचावा। जैसे बच्चा खिडौणिया नाल खेड रहा है मन दा परचावा इस जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया इसके परचावे जरा वड्डे ने इदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है और मामूली खिडौना नहीं राम दा खिडौना चाहिदा है ईश्वर खिडौना चाहिदा है ताए खेडे। क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां कामनावां बहुत वड्डियां वासना बड़ी अपार तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने बचपना जवानी वृद्धावस्था समाजिक जीवन विच राजनीतिक जीवन विच धार्मिक जीवन विच चूंकि गल करिए धर्म दी ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लिए ते सब कुछ समझ लिया जिन्हों नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझे। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर सोई अजान कहे मैं जानिया जानन हार न छाना रे। धर्म नु जानिया ने परमात्मा नु जानिया ने जानकारी बहुत कठी कीती है और कहिंदा मैं ए जानदा पर सकेने तू कुछ भी नहीं जानदा अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया की होया जे तेनू शरीर दी कोई समझ पै गई है वैद बन गया की होया जे तेनू कोई थोड़ा जिहा फिलसफा घोटना आंदा है अजे जीवन दी मूल सता दा तेनू कोई बोध नहीं अनजान। बहुत सारिया दा ज्ञान अनजानपने दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। इस नू इंज कहिए बहुत सारिया दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है उपर ज्ञान खड़ा कीता है तो उस सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चिया नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा मैं सब कुछ जानदा मैनू सब कुछ बोध है मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे होंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा और यही महापुरुष कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया। एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची मैं कुछ भी नहीं जानदा मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नू भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया प्रभु नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जांदी है अगर परमात्मा नू नहीं जानिया ईश्वर नू नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दिया इस अवस्थावां नू जिस ढंग नाल खोलिया है ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नू पेश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लेहो अंगुरिया सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसी मां दी गोद दे चुसदा बच्चा एक मासूम बच्चा और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद च लिया है अज जमे है एक दिन दा है दस दिन दा है पंद्रह दिन दा है बैठा ते मां दी गोद च है सो रहा है मां दी गोद च लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं कुख दा कोई ज्ञान नहीं पिला रही है रिजक दे रही है दुध मां पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है। परचा रही है खिड़ा रही है अपने हथा नाल पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए बहुत सारिया नु कोई बोध नहीं असी कित्थे हां किस दे हथा दे चा किसकी गोद देचा, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु, धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं, मुंह दी जबान है, बोल नहीं सकता, हाथ है गे ने कुछ भी नहीं कर सकता, पैर है गे ने चल नहीं सकता, दिमाग है सोच नहीं सकता, कान है गे ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारे ना धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है, ये ऐसी किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड दे प्रवृत्त हो गया है। लेकिन इस सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं। इस तरह हो रहा है जैसे गोद दे बच्चा है, दूध पी रहा है, खिडाया जा रहा है हथां दे, सुलाया जा रहा है गोद दे, पर उसकी अवस्था च सब कुछ अचेतमई चल रहा है। दूध पीना भी अचेतमई चल रहा है, हथां दे खेडना भी अचेतमई चल रहा है, धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत ते खड़े ने, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु, जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी ते मिलना चाहिए। बच्चे दा जन्म हो गया है, इस कोई सामाजिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई राजनीतिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है, इहदे कोल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है लेकिन जिसनू कहंदे ने जिंदगी ते नहीं है, जिसनू कहंदे ने जीवन ते नहीं है, इह ते विकसित हो गया, फिर जिस अज समा होवे लगेगा, लेकिन ऐसा देखण दे चाया विकास हो जांदा है समाजिक जीवन का, रिश्तियां भी समझ आ जाती है, ए मेरी मां है, ए मेरा पिता है, ए मेरी बहन है, ए मेरा भरा है, अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां दी सूझ समझ वधदी जा रही है, ए मेरा मित्र है, ए मेरी पत्नी है, ए मेरा पड़ोसी है, लेकिन ए मेरा परमात्मा है, धार्मिक तौर ते ते अजे भी अनजान रह जांदा है, अजे भी मासूम रह जांदा है, अजे भी जो है बच्चा रह जांदा है। एक दिन राजनीतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जांदा है, सियाणा हो जांदा है, और राजनीतिक लोगां दीयां गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी इक्को ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, इक्को ही मनोविरति दे मालिक होंदे ने, फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने, उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुरदमे नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जांदा है, राजनीतिक लोगां दे बोल हवा दे गुब्बारे दिखाई देंदे ने, और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जांदा है राजनीतिक तल ते, एक दिन इस नूं बोध हासिल हो जांदा है समाजिक तल ते, और इसे ही बोध ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਰੀਰਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਮਾਜਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜਨਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਚੇਤ, ਅਜੇ ਨਵਜਾਇਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਨਾਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਅੰਧੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਕੋ ਥੇ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਰਦਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ, ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 107.7 Pulse FM is a proud supporter of the Starfish Pack program in Surrey. Every Thursday, volunteers from the Lower Mainland get together to help pack two ready-made breakfasts, lunches, dinners, and snacks into a backpack to be delivered to hungry children on Fridays. These kids are then able to enjoy the nutritious and delicious food with their families over the weekend and be healthy and ready for school on Monday. The Surrey Starfish program is currently seeking donations and volunteers to help families in need. If you're interested in helping out, head to starfishpack.com. An initiative of Pulse FM Cares.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता नानक लेप छेप नालिपियते। सन्माननीय गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरवाणी विचार आरंभ करा पेश कर सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त जो सतगुरु ने ख्याल बख्शे ने थोड़े जिया समय च, वो मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दो पंक्तियां नू आधार बना के, है हजूर कत दूर बतावो, बुंदर बांधो सुंदर पावो। पंक्तियां मैं फिर दोहरावा, है हजूर कत दूर बतावो, बुंदर बांधो सुंदर पावो। दूर क्यों कहते हो? जगत में जो कुछ भी सानू मिल रहा है एक दिन बिछड़ता है। कुछ भी मिले दूर क्यों जाइए? तन मिल रहा है, तन भी बिछड़ जाता है। मां बाप मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। परिवार के संबंध बनते हैं, टूट जाते हैं। और इस तरह यार दोस्त मिलते ने, मित्र मिलते ने, संबंधी मिलते ने, आखिर बिछड़ते हैं। या असी बिछड़ते हैं या वो बिछड़ते ने, वारी वारी सब का विछोड़ा होता है। पातशाह की बाणी कहती है, एक सदी भी मिलिया होया, जन्म तो मिलिया होया, तो कभी बिछड़िया भी नहीं, लेकिन उसका पता नहीं है, बोध नहीं है। सत्संग का मतलब इन्ना है, सानू उसकी समझ आ जाए जो कभी बिछड़ता ही नहीं। सानू उसकी समझ आ जाए जो सब थां ते है। हर जगह मनुख का परिवार नहीं है, हर जगह मनुख दे मित्र नहीं है, हर जगह मनुख का वतन नहीं है, हर जगह मनुख का घर नहीं है, हर जगह परमात्मा है, हर जगह ईश्वर है। सदा अंग संगे अभंग अंग बेबूते, हर वक्त मनुख दे नाल मित्र नहीं आते, पुत्र नहीं आते, परिवार नहीं आता, निरंकार हर वक्त नाल। सदा अंग संगे अभंग अंग बेबूते, जो सदा संग है वो भूल गया, जिन्हों का संग वक्ती है कदी कदाई है वो याद का हिस्सा नहीं, याद आंदे। तो हुण मैं अर्ज करा, जिस दी याद आवे संबंध जुड़ जांदे ने, जिहड़ा भुल जावे संबंध टुट जांदा। रिश्ते याद देने, याद चल रही है, रिश्ता जुड़िया होया है, भुल गए हैं, रिश्ता टुटिया है। असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, बुलाया है, बुला सकते हैं। लफ्ज में फिर दोहरावा, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, बुलाया है, बुल सकते। इस वास्ते संसार दे सारे अवतारी पुरुष गुरु जना ने एक आवाज होके आख्या, याद करो। उर्दू च कहिंदे ने याद करो, पंजाबी च कहिंदे ने चेते करो, संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो। सिमरन करो, चेते करो, याद करो, किस नूं जिन्हों भुल गए, जिन्हों भुल गया। भुले क्यों? समझ नहीं और अकल प्रभावित भी नहीं। जिस तो मन प्रभावित हो जाए, समझ प्रभावित हो जाए, वो याद का हिस्सा बन जाता है, भुलदा ही नहीं। पुत्र नूं याद करना होवे, वाजा वजाण की लोड़ नहीं, तबला खड़कान की लोड़ नहीं, पुत्र की याद आपे ही आउंदी है।
मित्र नूं याद करना होवे कथा कहानियां दी लोड़ नहीं है, अब तो याद आउंदा है। परिवार नूं याद करना है, धन संपदा नूं याद करना है, पदार्थां नूं याद करना है, कोई फिलसफा घोटण दी लोड़ नहीं, किसी रागी सिंह नूं कहण दी लोड़ नहीं, तू राग अलाप, जरा मैं परिवार नूं याद कर लवां, पदार्थां नूं याद कर लवां, उन्हां दी याद आपे आउंदी, क्यों? उन्हां दी समझ है ते समझ प्रभावित है। जिस तो मन प्रभावित होवे वो याद दा हिस्सा बन जांदा है, जिस तो मन प्रभावित नहीं, कुछ है, मामूली है, एवें है या है ही नहीं, वो याद दा हिस्सा नहीं बनता, वो याद नहीं आउंदा। कमाल दी गल है, पुत्र याद आउंदा, मित्र याद आउंदा, परिवार याद आउंदा, पदार्थ याद आउंदे ने, धन संपदा याद आउंदी है, संसार याद आउंदा है, बोलदा है ते केवल निरंकार ही बोलदा है और सारे जगत नूं बोलदा है। जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं आउंदे उते भुले होए ने, पर जिहड़े आउंदे ने उहनां नूं भी बोलदा है। इस चक्कर च ना पैणा, 1000 किधरे सत्संगी बैठे हन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च, तो मैं इतनी गल दावे नाल कह सकदा कोई एक अद होवेगा जिहनूं याद आउंदा होवेगा, बाकी ने बाकियां लई गुरुद्वारे आउणा भी मनोरंजन है, कथा कीर्तन भी मनोरंजन है, इह भी मैं अर्ज़ करदा। जो याद दा हिस्सा बने, समझ लो मन उस तों प्रभावित है। मनुख पदार्थ तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित नहीं, तो पदार्थ दी खातर परमात्मा छोड़िया जा सकदा, परमात्मा दी खातर पदार्थ नहीं। मनुख परिवार तो प्रभावित है, निरंकार तो प्रभावित नहीं, परिवार दी याद है, निरंकार दी याद कोई नहीं। मनुख धन तो प्रभावित है, धर्म तो नहीं, इस वास्ते धन दी खातर धर्म छोड़िया जा सकदा, परिवार दी खातर निरंकार बुलाया जा सकदा, संसार दी खातर, पदार्थां दी खातर परमात्मा नूं परे सुटिया जा सकदा है। और ऐसा है कि ठीक है, पदार्थ उसे ने बनाए ने, संसार उसे ने बनाया, फिर परिवार दे संबंध भी उसे ने बनाए ने। दुनिया पूत सब हरते किए, सबना को संबंध कर दिए, मात पिता सुत बंदप भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। ये सारे रिश्ते ते बनाए उसे ने, पर कमाल दी गल, रिश्तेदार याद आवन, जिसने रिश्ते बनाए ने, ते जो महान रिश्तेदार है कदी बिछड़दा ही नहीं, वो भुल जाए। इस वास्ते दुनिया दे तमाम अवतारी पुरुषां ने आख्या याद करो, कीर्तन मनुख कर रहे है, कीर्तन सुन रहे है, उसकी याद कोई नहीं, पाठ मनुख कर रहे है, उसकी याद कोई नहीं, कथा कर रहे है, उसकी याद नहीं है, दान पुन कर रहे है, सेवा कर रहे है, उसकी याद नहीं। और जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, हिरदा पवित्र नहीं हो सकता, जितनी चिर तक उसकी याद नहीं, खेड़ा नहीं हो सकता, खुशी नहीं हो सकती। तो रोंदे पिटदे मिलणगे कीर्तन करन वाले, रोंदे पिटदे मिलणगे पाठ करन वाले, अक्सर दुखी मिलणगे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदां च आण वाले, ऐ ते कुछ भी नहीं, एक सच्चाई है। ये ते हुण मैनूं नहीं पता किन्नी कि सच्चाई तुसीं सुण लैंदे हो, तो बड़ा आजमा किन्ना कै। अगर परमात्मा आनंद है तो फिर मनुख दुखी क्यों है? गुरुद्वारे आण वाला ते दुखी नहीं होना चाहिए। अगर परमात्मा आनंद है, खुदा आनंद है, तो नमाजी ते दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर सुख दा सोमा है, तो मंदिर विच पूजा पाठ करने वाला ते कल्पना विच दुख तो नहीं होना चाहिए। पर मैर्ज करा, रो रहे ने मंदिरां विच आण वाले, और तरह तरह के रोने धोने धो रहे ने गुरुद्वारियां च आण वाले, नमाजी अपनी थां ते रोना पिटना जारी रखी बैठे ने। परमात्मा आनंद है, पर खुदा भी अगों सजदे करने वाला दुखी है। परमात्मा आनंद है, कथा कीर्तन करने वाला रो रहा है, कुछ भी नहीं है, हकीकत है। परमात्मा आनंद है, ये धार्मिक मंदिरों के छाण वाले को कुछ भी नहीं है, कारण मन प्रभावित नहीं है, क्यों? समझ नहीं है। तो मैं अक्सर बयान करता हूं तो दोहरा दया, जो मेरी समझ दे नहीं है, नहीं है, होवेगा परमात्मा है, परमात्मा मेरी समझ दे नहीं है तो नहीं है, है परमात्मा, ईश्वरी है, उस तो बिना कुछ नहीं, पर मेरी समझ दे नहीं है तो नहीं है।
ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੜਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਸੀਮ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ ਸਾਗਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਆਈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀਂ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ 150 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਥੇ ਕਿ ਇਲਮ ਸੇ ਕੁਛ ਜਾਣੇਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ। ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਥੇ ਕਿ ਇਲਮ ਸੇ ਕੁਛ ਜਾਣੇਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤੋ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਏਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਮੁਖੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਏ। ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰੇ, ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਪ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਤੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਗਿਣਤੀ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ,
समझदे च भी ना हो तो फिर किस तरह बयान करोगे। असीम है, असी उसनों गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, उते व्यापक है, सब कुछ उसे दे विच है, उस तो बाहर कुछ भी नहीं है। इस दे उते मैं एक उदाहरण देना होना थोड़े सामने रखा। एक मछली सागर विच अपने परिवार को बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हजारां मील दूर चली जाती है, क्योंकि जमीन नालों तीन गुणा पानी ज्यादा है, सागर बहुत बड़ा है। एक मछली अपने जन्म स्थल तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हजारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो अपने वतन तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर हजारां मील दूर चली जाती है। लख भी मछली कोशिश करे सागर तो दूर नहीं जा सकती, पानी तो दूर नहीं जा सकती, जिथे जाएगी पानी ते है, जिथे जाएगी सागर ते है। मनुख अपने वतन तो दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है, मनुख अपने घर तो दूर जा सकता है और अक्सर रोज चला जाता है, मनुख अपने परिवार तो दूर जा सकता है और अक्सर चला जाता है, लख भी कोशिश करे मनुख निरंकार तो दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जिथे जाएगा निरंकार पे है तू सब नहीं थाई, जिथे हो जाए साचा सिरजन हार जी तू ते सारी था। मैं फिर अर्ज करा, सारी थां ते मेरा वतन नहीं है, सारी थां ते मेरा जन्म सफल नहीं है, सारी थां ते मेरा परिवार नहीं है, सारी थां ते मेरा निरंकार है। तू सब नहीं खाए जिथे हो जाए साचा सिरजन हार जियो, जो किसे वक्त है ते किसे वक्त नहीं, ते किसे थां ते है ते किसे थां ते नहीं, वो ते याद आउंदा है, पर जो व्यापक है वो बोलदा है। इस वास्ते सत्संग, ए मंदिर मस्जिद इस वास्ते ने, ये गुरुद्वारे इस वास्ते ने, उसकी याद आ जाए, उसकी याद आ जाए। मैं फिर अर्ज करा, असी उसनु गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते, उनु भूल जाना महा दुख है, उनु याद करना महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल, उन्होंने दो सवाल बड़े कीमती किए ने, और उन्हें समझे बिना की कीर्तन किया ते की सुने, की कथा कीती ते की सुने। लोगन राम खिलौना जाना, कर्म कांड चलता है, चाहिए कर्म कांड भी चाहिए, अगर छोटी उम्र च मनु खिडौने नाल खेडता है। कर्म कांड नु कबीर इंज बयान करदे ने, फल कारण फूली बन राए, फल पाका तब फूल विलाए। जैसे जैसे फूल विचों फल निकलदा है फूल झड़दा है। ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नाश। जद ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जांदा है कर्म कांड सारा खत्म हो जांदा है। अगर कर्म कांड सारी जिंदगी पीछा कर रहा है छुटदा ही नहीं, तो ज्ञान का फल अजे नहीं निकले। सारी जिंदगी दवाई खानी पै रही है, हटदे ही नहीं दवाई औषधि, तो अजे रोग नहीं गया, रोग नहीं गया। रोग दे जानदिया दवाई नु जाना ही पेगा, रोग दे मिटदिया दवाई नु परे सुटना ही पेगा। ब्रह्म ज्ञान दे उदय होंदिया कर्म कांड एक पासे हो जाता है। पर धार्मिक जगत विच व्यर्थ दा कर्म कांड है, चाहे मुस्लिम जगत है शरा ही शरा है, चाहे हिंदू जगत है कर्म कांड ही कर्म कांड है, चाहे सिख जगत नु मैं देखदा फोका कर्म कांड ही कर्म कांड है, ऐसे कुछ भी नहीं बगते, इस तो अलावा कुछ भी नहीं। कर्म कांड साल छे महीने ता ते ठीक, सारी जिंदगी पीछा नहीं छड़दा। या कर्म कांड इंज है जिमें पहली क्लास विच बच्चे नु पाया, उनु अजे अक्षरां दा बोध नहीं है, इसनू अक्षरां दा बोध हो सके तस्वीरां राही समझाया जांदा है। कक्का कलम, चचा चाकू, छछा छतरी, एड़ा अंब,
अंब की तस्वीर बनाई है ताकि इन्हों पता चले अखर एड़ा है। गग्गा गणेश पर साडा देश जेड़ा है हुण धर्म निरपेक्ष है। पहले तो गग्गा गणेश मिलता सी, अजकल गग्गा गदा मिलता है, हटा दिता है गणेश। धर्म निरपेक्ष का मतलब है देवी देवतावां नूं महापुरुषां नूं गुरु पीर पैगंबरां नूं इस देश चों कढो इक पासे सुट्टो। हालांकि यही देश पूर्ण तौर ते धार्मिक होण दा दावा कर सकदा है और इसी देश ने ब्रह्मज्ञानी पैदा कीते ने, अवतार पैदा कीते ने, संत पैदा कीते ने, दिव्य ज्योतियां देवते पैदा कीते। पर कीता जाए कुछ अरसे तो मूर्खां दे हथ विच देश आया है, बिल्कुल मूढ़ां दे हथ विच, कहण विच मैनूं कोई संकोच नहीं। ठीक है किसी वक्त छोटे छोटे इलाके दे राजे सन, श्री राम श्री कृष्ण जनक महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक सन, देश की फिजा धार्मिक बनी हुई सी। किधरे हरिश्चंद्र सी, किधरे जनक सी, राम भी राजा सन अयोध्या दे, श्री कृष्ण भी राजा सन द्वारका दे, महाराजा रणजीत सिंह भी राजा सन पंजाब दे। वो गुरमुख पहले सन, गुरसिख पहले सन, राजा बाद दे सन। कोई भी चीज कीमती घर विच आए महाराजा साहब नूं रणजीत सिंह नूं गुरु चेते आ जांदा है। कहिंदे ने निजाम हैदराबाद कुछ मुश्किल विच पिया, उन्हें महाराजा रणजीत सिंह तो मदद मंगी फौज दी। आखिया घट तो घट 1000 खालसा मैनूं चाहीदा है, मेरी रियासत विच बगावत है, मैं तो काबू नहीं हो रही। महाराजा साहब ने उस जमाने 1000 खालसे लाहौर तो भेजे, जिन्हां नूं अज असी दक्कनी सिंह कहिंदे आ, महाराष्ट्र दे जो रहिंदे ने, तमिलनाडु दे जो रहिंदे ने, आंध्रा दे जो रहिंदे ने, ते ओही ने जो महाराजा साहब ने भेजे सन। अज उन्हां दी बहुत वड्डी तादाद है, पर उत्थे ही उन्हां ने शादियां दे सिलसिले चलाए तो मिक्स जिहा फैमिली हो गई है उन्हां दी, रंग रूप भी उन्हां दा आंध्रा तमिल या महाराष्ट्र जैसा हो गया। लेकिन सिखी दा जज्बा बड़ा प्रबल है दक्कनी सिंघां विच, इंज कह लो सिखी दी सही तस्वीर उन्हां कोल मौजूद है, सिखी प्यार भी मौजूद है, सिखी जज्बा भी मौजूद है। जद निजाम हैदराबाद उसने देखा इन्हां 1000 खालसिया ने अमन बहाल कर दिता है और खुशी वजह महाराजा रणजीत सिंह के जन्मदिन पे निजाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी भेजी, चंदोआ भेजे। जिस दिन लाहौर विच ये तकरीब मनाई जा रही थी महाराजा साहब दी, ये चाननी बन दी गई सिंघासन ते। महाराजा साहब सभा दे चाहे निगाह चली गई चंदोए ते, चाननी ते बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए जर्री दा कम। दास ने कई दफा इस चाननी दे दर्शन किए ने होशे खाने च, क्योंकि दास एक महीना हर साल हाजरी दरबार साहब भरदा है गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब को लेके दिवाली तक। किसी वक्त सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह सबका हेड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब मेरे को प्रण ले लिया, ए महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो, थोड़ी सेहत ठीक होगी, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास के दर से हाजरी भरनी है, तो मैं हाजरी भर रहा हाँ। शौक नाल मैं इस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल दे साल में दर्शन करदा सी, उचेचा होशाखाना खुलवा के। बदकिस्मत ये सन 84 दे चो जल के खाक हो गई, नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे उपर बनी गई महाराजा साहब देखदे ने देखदे ही रह गए। उस दिन एहलकारां नूं ये चाननी ये चंदोआ ये कदों बनाया है, अहलकार कहिंदे ने महाराजा साहब बनाया नहीं है सी, ये ते निजाम हैदराबाद ने आपनों भेट भेजी है।
कि सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दिती खड़े ने थोड़ा जहा सोची पै गए तो फिर कह लगे उतारो इसनों उतारो। जिन्हों एहलकारा ने चाननी बनवाई सी उन्होंने तो कंबड़ी छिड़ गई जिमें कुछ गलती हो गई जिमें भुल हो गए। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है असी तो खूबसूरत कीमती जान के बन दिती सी आपका हुक्म उतारण का उतारदे हां क्या वाकई ये आपकी शान दे छाया नहीं है। पता है महाराजा साहब की कहने इतनी सुंदर है इतनी खूबसूरत है इतनी मनमोहक है ये दरबार साहब के सिर पर चुलनी चाहिदी है ये गुरु रामदास जी के सिर का चंदोआ बनना चाहिए मेरे सिर का नहीं उस वक्त भजवा दी उतार के। घर विच ताकत वधदी जा रही है साजो समान वधदा जा रहा है पदार्थ वधदे जा रहे हैं महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है राज सता वधदी जा रही है गुरु भक्ति भी वधदी जा रही है। आम की आउंदा है घर विच पदार्थ आने शुरू होए ते घर विचों रहत बैत निकलनी शुरू हो गई धन चौखा आना शुरू हो गया हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया घर पदार्था नाल भर गया हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया उहदी याद तो खाली हो गई इस तरह ही होंदा है। पर राज सिंघासन ते बैठ के श्री कृष्ण दी आत्मा तो गीता दा फलसफा निकलदा है राम दे रोम रोम विच मर्यादा निकलदी है महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम विच भक्ति निकलदी है हरिश्चंद्र दे रोम रोम विच सच्चाई निकलदी है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश सी बदकिस्मत अधार्मिक लोगां दे हत्थ च आ गया ओ देश विच ऐ जो पस्ती खास करके इखलाकी पस्ती हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असी देखदे हां भावें कोई कुछ आखे मैं इसका एक ही कारण समझदा धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति धर्म चाहिदा व्यवहार विच ताकि व्यवहार विच बेईमानी ना होवे धर्म चाहिदा परिवार विच ताकि परिवार विच कलकलेश ना होवे रिश्तियां दे दराणा ना पैन धर्म चाहिदा राजनीति विच ताकि राजनीति विच खोआ खाई ना होवे जो है तशद्दत ते जुल्म ना होवे और खोआ खाई ना होवे। हुण ते की है जो एक बंदे दी जेब कट लवे वो चोर है जेब कतरा है जिहड़ा सारे मुल्क दी जेब कट लवे मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है जो किसे एक बंदे दी मूंह दी बुरकी खो लवे असी उसनूं डकैत कहने हां चोर कहंदे हां पर जो बंदियां दे नाल नाल गवां दा चारा भी सारा हजम कर जाए मिनिस्टर हुंदे वो ताकतवर ने। हालात ये ने एक हकीकत है एक सच्चाई है मुख्तसर जो है मैं इस करा देश धार्मिक से सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इस देश देश पैदा है इस देश की ऐसी हवा ऐसी फिजा ऐसी वाइब्रेशन मैं देखता बाहर दे देशों की भी अपनी एक वाइब्रेशन उसे साइंटिस्ट पैदा होते हैं विज्ञानिक पैदा होते हैं दार्शनिक पैदा होते हैं मनोविज्ञानिक पैदा होते ने संत ने संत इस देश ने पैदा किए इस देश की फिजा इस देश के हालात इस देश का वातावरण। खैर मुख्तसर मैं इस करा भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने गम चे बाशद चीफ तो शादी गम की है गम किसनों आखोगे गम और शादी की है खुशी की है शादी के अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है ये गल वखरी है साडे देश दे शादी दे अर्थ विवाह करदे ने ये लफ्ज फारसी जबान दा है ईरानी भाषा दा लफ्ज है ई दिल शाद अस्त ये दिल बड़ा खुश है शाद दा मतलब खुश शादी दा मतलब खुशी ई खाने शादी अस्त
ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਕਾਹ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈਣ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਨਿਕਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਨਵਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਘਰਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ, ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ, ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਦਾ। ਗਮ ਕੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਅਜ ਯਾਦੇ ਖੁਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆਂਬਾ ਮੁੰਤਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੋ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਨ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਸਦਾ ਰੋਏਗਾ, ਤੜਪੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਜਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸ਼ੇ ਲੋਗ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋ, ਬੜੇ ਰੋਗੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੇਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਗਮ ਚੇ ਬਾਸ਼ਦ ਗਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਤਹਾ, ਉਸ ਲਾ ਇੰਤਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਏ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਰ ਗਏ, ਖੇੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ? ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਸਾਖੀ ਮਾਪ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ
बस शरीर नूं ढो रहे ने जिवें अपनी लाश आप बैठाउंदे ने, कुछ भी नहीं। सुख मर गया, चैन मर गया, सुकून मर गया, शांति नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है। रस ते मर चुके हैं, सुख ते मर चुके हैं, आनंद ते मर चुके हैं, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन चार मनुख मनुख की अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंदे ने, और ये अपनी अर्थी आप पे घसीटदा है। दिसदा है जीवदा जागदा पे सर्व सौसां दे चलन नूं जीवदा जागदा नहीं आखीदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया, जिन्ने चिर तक उसकी याद न चले तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सौ मर जाए जियो। चेते शक्ति, याद शक्ति एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा? जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज लोग कीर्तन करते ने सुनते ने भुल जाते, कथा करते ने सुनते ने भुल जाते, पाठ करते ने गुरुद्वारे आते ने मंदिर आते ने भगवान से भुल जाते। जिहड़े नहीं आते वह भी भुले, जिहड़े आते ने उन्होंने भी भुले। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं तो समझ दे नहीं आता, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज करते हैं, समझ आ जाता नहीं, समझ समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनों नहीं समझ सकता, पर मैं तेनों याद पे कर सकता। इस जो एक छोटा जहा उदाहरण मैनु चेते आया, एथन दी गल है। सागर तट पे एक पांच साल साढ़े चार साल का बच्चा जारो जार रो रहा है। उस वक्त का एक महान संत सुकरात टहल दा होया उथे आया, देखदा है बच्चा रो रहा है, कोल आ रहा है, सिर ते हथ रखिया, आखे बेटे क्यों रो रहे हैं? हाथ विच प्याला सी, प्याला। कहन लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिदा है, पर करां कि मैं काफी देर दा थक गया, ये सागर मेरे प्याले च नहीं आऊंगा। कहिंदे ने बच्चे की ए गल सुन के सुकरात की भी चीख निकल गई, रोण लग पे। बच्चा कहन लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लग पे, तेरा प्याला किथे है, तू क्यों रोन लग पे, तेरा प्याला किथे है? बच्चे की समझ च भी आ गया, रोना समझ दे चाहुंदा है, हासा समझ दे चाहुंदा है। मनुख जन्म तो जो लेके आंदा है संसार विच हासा ते रोना, बाकी भाषा मां तो सीखदा है, समाज तो सीखदा है। कोई मनुख भाषा लेके नहीं आता। एक बंगाली मां का बच्चा जो उसकी गोद विच है, पंजाबी मां की गोद विच दे दिता जाए, पंजाबी बोलेगा, बंगाली नहीं बोलेगा। एक ईरानी मां का बच्चा गुजराती मां की गोद विच दे दिता जाए, यकीन जानो पर्शियन नहीं बोलेगा, गुजराती बोलेगा। ये बाद विच मिलती है भाषा, समाज तो मिलती है। संस्कारां दे ते हसना ते रोना है, और ये सारी दुनिया का सांझा। जब कोई हस रहा होवे असीं इस तरह नहीं आखदे कि हिंदी दे हसदा पिया या सिंधी दे हसदा पिया, इंग्लिश दे हस रहा या जर्मन दे हस रहा, पंजाबी दे हस रहा या बंगाली दे हस रहा, हस रहा है। हासा सांझा है, सारी दुनिया का सांझा है, एकदम समझ दे आ जांदा है। रोना भी सांझा है, कोई रो रहा होवे असीं थोड़ी आखदे हां गुजराती दे रो रहे है, मराठी दे रो रहे है, हिंदी दे रो रहे है या संस्कृत दे रो रहे है, इंग्लिश दे रो रहे है। रोना एकदम समझ दे आउंदा है, हासा एकदम समझ दे आउंदा है। बच्चा भी समझ गया, बाबा रो पे है, फकीर ते रो रहे है, बाबा तेरा प्याला किथे है? मेरा प्याला भी मेरे कोल है, ऐ मेरे बेटे तू सागर नू प्याले च भरना चाहना है? मैं पूरे दे पूरे परमात्मा नू खुदा नू अपने दिमाग विच भरना चाहना, जानना चाहना, पर तैथों मैनू शिक्षा मिल गई है, बड़ा ज्ञान मिल गया, सागर प्याले च नहीं आवेगा, सारे दा सारा खुदा मेरे दिमाग विच नहीं आ सकता, तैथों मैनू शिक्षा मिल गई है।
सागर प्याले विच नहीं आवेगा। बच्चे ने भी ये बोल सुन ले, सागर प्याले विच नहीं आवेगा। बिल्कुल कंडे ते चला गया समुंदर दे और प्याला समुंदर दे सुट दिता। आख्या ए सागर जे तू मेरे प्याले च नहीं आंदा ते चलो ना सही, मेरा प्याला ते तेरे विच आ सकदा। कहिंदे ने ये 80 साल का बुढ़ा फकीर उस बच्चे दे पैरी पै गया, सजदा कीता है। ऐ खुदा तू ते सारे दा सारा मेरे विच नहीं प्रगट हो सकदा, मैं सारे दा सारा तेरे विच लीन हो सकदा। समझ आ गई मैनू, सूरज दी किरण मेरे घर आ सकदी है, उसकी रोशनी मेरे घर आ सकदी है, कि जे मैं जिद करा नहीं है सारा सूरज मेरे घर आवे, मेरे कमरे च मेरे नाल बैठे। जमीन नालों हजारां गुणा वड्डा है सूरज, सारी धरती दे भी जिसनू थां कोई नहीं, तेरे कमरे च थां मिलेगी, तेरे कोल थां मिलेगी, पर आ सकदा है उहदी किरण आ सकदी है, उहदी रोशनी आ सकदी है, परमात्मा दे गुण आ सकदे ने, परमात्मा का आनंद आ सकता है।